आदरणीय तरंग हेमदाम मंदारम रैन अभी सुबह पतनो ओयागे हास रिद्धि पाटिन दिली सैन्य खावता था मटे हेमा हान्ने ही तो ना अदो यहाँ हनवा ग्रीष्म में व्यली हुलांग हमादी मतक कुने खावता किया ला जीवित ऐले बो ग्रीष्म काले पेन तेक माने वसंते थी बुन्ने हम आगे ने गिये में व्यली हुलांग तमाई तरंगा रवटुना के अने ऊपरी मेन माई हदवतीन गत्तु सियल तीर न गेनावे काष्टक महापुलव व्यली हुलांग तमाई किसी मला तेत बवक नो तिबुन ओन मतक वेनवा इंद हिट नै किवत बोरु एत ग्रीष्मेट पासे वस्साने नो එතකොට අපි වගේම පරිසරයත් අලුතින් හැදවෙනවා. ඒ තමයි සබදාම රමණී සුමේදා.

कोई तरम काले मैं पहन डाल मम पर संगलात कुछ रे कुनाटु काल आवत महा कुनाटु काल मैं सीतल सुलेंगनत महा ग्रीष्म काल वाला बियले हुलेंगनत मम मैं पहन सिला पर संगला हरियत मागे आदरे वाके मम मैं पहन पर संगला मैं दलवेन्ने पहनक नेवे मागे आदरे